दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह का नाम जपेगा, जो एक बरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो तायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साढ़े भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साद सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन, जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं। भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल,

मैं जटा मूंड तारों, मैं जंगल च नहीं जाना रवांगा इस देश विच। मैं जटा मूंड तारों, ना मुंदर का सवार हूं। देश की रक्षा ना जटा वाले कर सकते हैं, ना मुंदरा पाउन वाले कर सकते हैं। हूं देश की रक्षा करनी पवेगी और मुकाबला करना पड़ेगा। ना जटा मूंड तारों, ना मुंदर का सवार हूं। जपो तास नामं सरे सर्व कामं, मैं उदा नाम जपांगा मेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। जपो तास नामं सरे सरे सर्व कामं, ना नहीं नहीं मैं अखां मीट के समाधि ला के लोगों नूं लुटना नहीं। ना नहीं नहीं ना डुबन दिखाऊं, ना तो करमंग कमाऊं, ना पेठी कहाऊं। ना जटा मुंड तारों, ना मुंद्र का सवारों। जपो तास नामं सरे सर्व कामं।

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंडे है, ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, जो मन जीत सका।

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा हंकार वाला झगड़ा जिसे होमे वधे। कई बार परमार्थ की विचार करदे होया होमे वध जांदी, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितिया। कहिंदे उत्थों रब उत्थों चला गया, जिसने आ चीज आखी ओहदे कोल रब चला गया। जे जे बात करत हंकार, तिन ते भिन्न रहत करता, जानियो हर जन मन माई, वेदक देव दिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इत्थे तां रब है ही नहीं। वेदक देव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही। आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीच मग सूझ न जाई। ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, ते अगला कौन वेखेगा। आंख मीच मग सूझ न जाई, ताहे अनंत में

जो था अब है और आगे हुए हैं। पूछा महाराज तुहाडा गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है? कहंदे आओ मैं तुहानू अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तरा तर भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिव जी ते ब्रह्मा जिन्हों का तप करते ने ते उन्हों का अंत का पता नहीं लगा। आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे।

चालने में ठगियो सब लोगन शीश जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथां दे नौ बदा ले ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नू ठगन वास्ते ध्यान लगे ठगियो सब लोगन शीश जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर स्वा मल लई लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव आदे सबे डैकाए चंगे मारे सारे लुट ले मूर्ख ते स्याने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड्डिया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गया कहिंदा चंगा भला मैं स्याना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग सन लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदे सबे डैकाए लभ के लगे फिरियो कर ही कर जोग के नैस सबे बिसराए आखो प्यारियो श्रीवा सारिया ने आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारां दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता शब्द फिर कर लो सारे गज के आखो लोग दा मारिया होया घर घर भी चला कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कार कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू ये नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहिंदे ते पढ़ लेना असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने कोई बिल्कुल गलत चीज ये मलम्मा नहीं चल सकेगा ये गलत है साडा योग के न्यास सबे बिसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नेम सन वह इन्हू भुल गए नहीं पता नहीं कि जोगी कहिंदे किनू नहीं पर यह मूँह ते सवा ला के जोगी बन के क्या फिरदा जरूर जिवें इन्हू नहीं पता कि सिख किनू कहिंदे नहीं ते कहिंदा जरूर मैं अपने आप नूं सिख ते बड़े मान च पढ़दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा ये क्यों नुकसान हुंदा है ये पढ़न वाल पै गया ते प्रैक्टिकल किसी अंदर चीज ना जीवन लियांदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर पढ़ छड्डिया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किसनू कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तां वी पढ़िया गया 2 बजे भी पढ़िया गया 4 बजे भी पढ़िया गया मृतक ते भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया ये खास नियम हन ये तख्तां नूं जाके पुछो कि राज करेगा खालसा नियम की और फिर अगो खालसे दे अर्थ करे कौन जिहड़ा डंडे खावे वह अर्थ करे क्योंकि तुसां अर्थ मन्ने नहीं पर आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पर अज नहीं मैं कहना भाई कभी फिर आवांगे फिर वेखी जाए आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हजूर कहिंदे जोग के न्यास सबे बिसराए इन्हू पता ही नहीं कि नियम की हन आ छोटा जा नियम गुरु रामदास सच्चे पातशाह लिखिया आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सारे आ गए भज के सारे ही आ गए सारे गाउन लग पे सारे सुन लग पे सतगुर ने आग्या दिती सारी आई संगत जी सारे सारे सिख हो कहिंदे महाराज सारे ही तुहाडे सिख सारे ही तुहाडे सिख कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने चोज वरताया जे बीबी आवे तो पुछण बीबा तू किहदी सिखणी है वो अपने पति का नां लै दे जां इशारा कर दे मैं महाराज इहदी सिखणी सिख आया प्यारा तू किहदा सिख है उन्हें फिर अपने घर वाल इशारा करता कि महाराज मैं इहदा सिख सारे नूं पुछिया कोई एक अद्धा निकलिया कहन लगे सारे अपने अपने सिख ते मेरा सिख कोई भी नहीं निकलिया

जे जे गौ सिंबिया पे मैं करत जगते गए महापुरुष कहूं ना पछाना किसी ने पहचान नहीं कड़ी महापुरुष कहूं ना पहचाना कर्म धर्म को कछू न जाना ना कर्म दस्या चंगा ते ना धर्म दस्या आख्या पूजा मेरी करो बस अवरन की आशा किछ नाही एक आस धरो मन माही कहिंदे होर किसे दी आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो अवरन की आसा किछ नाही एक आस धरो मन माही आन आच आस उपजित कछ नाही वाकी आस धरो मन माही कोई परत पुराण को कोई परत पुराण काल न सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कोई पुराण की पूजा कर रहा है कोई पुराण पढ़ रहा है हजूर कहते दोवें धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना काल न सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कई कोट मिल परत पुराना बाचत किते पुराण अजाना अंतकाल कोई कामना आवा दाव काल काहू ना बचावा अंतकाल को कामना आवा दाव काल काहू ना बचावा क्यों न जब ताको तू पाई अंतकाल जो हो सहाई क्यों न जब ताको तुम पाई अंतकाल जो होए सहाय फोकट धर्म लखो कर परमा इन खाली समझो फोकट

हमें बनाया। मैं तो दुनिया का हनेरा दूर करने वास्ते आया। एक कारण प्रभ हमें बनायो, पेड़ पाख ए नोक पिठायो। आखो श्रीवा, लिहाज करांगा केवल सच दा करांगा, दूजे दा किसदा करना नहीं। ए कारण प्रभ हमें बनायो, भेद पाख ए लोक पठायो। भेद दस के जिम तिन कही सबन उचरो, जिमें मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है, मैं सारे नूं कहन लगा मुखातब करके, ए चीज याद रखनी, डिंब विम किछ नायक ना करो। एक तैनू भेख नहीं करना और एक वह मिच भुलेखे च नहीं पैना। ए मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख नूं करन देना। डिंब विंब किछ नायक ना करो, मैं ना भेख करना ते ना वहम करना। एक अकाल पुरख की ओट रखनी, कहांगा कि लो प्यारे पे सारे तुसीं कह लो।

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्हें नहीं लभ सकता जरा तू प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

लगी और न यही महात्म्य। अब तारी उजागिर यान कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत।

पंचायने आपे होवा अपने आप साजियाने आपे ही कम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब।

संतों के तरियोरे आदि पुरख पर तक लिखो अखिल मस्त कितुरे प्रगट ज्योत जग मगे तेज पूमंडल छायो परस परस परस परस गुरु।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

0: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਛਲਦਿਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜਣ ਕਾਹਦੀ ਪਈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਲਖਨੰਦਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀਏ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਤਨ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਤਰੇ ਵਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਈ। ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਸਫਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪਥ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੋਂ ਉਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸਤ। ਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਸੱਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪਏ ਪਾ ਖਾਕ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। गुरु चरणा दी खात ही हो जाए के भला भाई जी धर्म के मालिक ते चलन वाले दे अपने अपने असूल ने। सिख का भी असूल है, गुरमुख का भी असूल है, ते हर धर्म वाले ने, हर धर्म वाले ने इशनान नू बड़ी महत्ता दिती है। गुरमत विच भी कहा गया गुरमुख नाम दान इशनान। भाई साहब जी सिख का नहाना की है, सिख का इशनान की है? ते भाई साहब कहंदे ने, कहंदे ने गुरसिख का इशनान, गुरमुख का इशनान यह है कि निरा बाहरों ना अपने आप नू साफ करे, ये निरा साबण दे नाल शरीर नू ना साफ करे। धन गुरु नानक कहंदे भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए। इसे तरह भरिए मत पापा के संग, ओ धोपै नावे के रंग। शरीर गंदा हुंदा है, कपड़े गंदे हुंदे ने, साबण नाल साफ कर लेने। मन गंदा हो जावे ते नाम दे रंग नाल धोता जांदा है, साफ करना है। मन भी जरूर साफ करना है। भाई साहब कहंदे ने गुरमत लै, गुरु की मत लै के माड़ी मत दुरमत कुमत नूं अंदरों धो के बाहर कढ दिंदा है। सिख दा असली नहाउणा तां इह। वैसे तां सिख वास्ते है कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन पहे अरोगा। तू बाहरला इशनान करेगा तेरा शरीर अरोग रहेगा, तू मन दा इशनान बाणी द्वारा करेगा तेरा मन अरोग रहेगा। इस दोहरी अरोगता वास्ते दोहां पक्खां तों हाइजीनिक पक्ख नाल, मन दी हाइजीन इस गल विच है कि मनुख मन नूं पापां तों साफ रखे, ते तन दी हाइजीन इस गल विच है कि इस नूं गंदगी तों साफ रखे। अज नारे लगदे ने शहरां नूं साफ रखो, गलियां नूं साफ रखो, घरां नूं साफ रखो, शरीर नूं भी साफ रखो। लेकिन जे मन साफ ना कीता ते बाहरली सफाई बेकार होके रह जाए। भाई साहब कहिंदे ने गुरमत लै दुरमत मन धोवे। अच्छा भाई जी ये तो हो गया इशनान, हो गया हुण पूजा करेगा। धर्म दे मार्ग ते चलन वाले दी पूजा भी तो कोई हुंदी है, गुरमुख किस चीज की पूजा करेगा? भाई साहब कहिंदे ने गुरमत अनुसार कहिंदे ने गुरसिखी का पूजना, गुरसिख पूज पिरम रस पोवे। गुरसिख गुरसिख की ही पूजा करे, क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरते। जो सिखा नू लोक दोचै सो गुर खुशी आवे, जिन्हें गुरु की खुशी लैनी हो गुरसिखा की खुशी लवे। गुरसिखा की पूजा सेवा करने वाला गुरु की पूजा सेवा करता है। वैसे साहब कलगीधर पातशाह जिसले सिखा ने पूछा सी नांदेड़ विखे महाराज जी पातशाह ने कहा सी गुरसिखो करनी पूजा अकाल की, दीदार खालसे का परचा शब्द का। जिन्होंने पूजा करनी है अकाल पुरख की पूजा करनी, मगर अकाल पुरख का नजर नहीं आता किदे विचों करिए। साहब कह लगे सिख की पूजा करोगे गुरु की पूजा होगी, गुरु की पूजा अकाल की पूजा है। महाराज फिर जिदे चरनी ला चले हो, गुरु ग्रंथ साहब के मथा टेकन वास्ते कह रहे हो, यदि पूजा नहीं करनी। साहब कह लगे यदि निरी पूजा नहीं करनी, निरे धूप दीपदा देंदे रहना, इनू समझना। इस शब्द विच भाई साहब की इस पौड़ी विच अंतली तुक सार तुक है साध संगत गुर शब्द विलोवे। गुर संगत नाल रल के गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के नाम प्राप्त करन वास्ते, नाम दा मखण लैण वास्ते, नाम दा रस लैण वास्ते गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के। हुण जिहड़ा गुरमुख माफ करना गुरमुखी नहीं पढ़िया, वह गुर शब्द नूं किवें पढ़ेगा? असीं सारा कुछ चार चार पंज पंज ज़बानां पढ़ लैंदे आ, हिसाब पढ़ लैंदे आ, बड़ा कुछ पढ़ने आ, लेकिन गुरमुखी पढ़ने वास्ते जे सिख नूं वक्त नहीं ना समझ लैणा, अजे इस राह ते तुरन दा जतन नहीं कर रहा, नीयत बनी नहीं अजे। गुरमुखी पढ़नी ते गुरमुख बन के गुरसिखी दे विच प्रवेश करना, गुरबाणी नूं विचार सहित पढ़ना, गुरबाणी नूं समझण दा जतन करना। महाराज पंचम पातशाह नूं सिखां ने पुछिया सी महाराज बाणी पढ़न दे की लाभ ने, साहिब गुरु अर्जन साहब ने दस्सिया सी जिहड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ध्यान देना, इच्छा रख के पढ़ेगा सो पदार्थ पाएगा। असी आम तौर पर इच्छा रख के पढ़ने, असी बाणी पढ़ने, कोई ना कोई मकसद सामने आता। महाराज कहते ने मकसद पूरे हो जाने, जिहड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा उहदे मकसद पूरे रखो। ते महाराज कहते ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान हो, जिहड़ा बाणी नूं ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा वह आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नूं समझण वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखां ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया, विचार नाल भी पढ़िया है, इच्छा करके भी पढ़िया, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वह है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होंदी। भाई साहब पूजा तो हो गई गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सारसराय कोल पहुंचे ने, पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सारसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहिंदा मैं मुल नहीं पा सकता, हालांकि मुल पाउण वालियां ने गाजरा मूलियां भी पाया सी, मठियाई का सेर देण नूं भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। वह कह लगा एडा कीमती रह दा मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना, मेरे बजुर्गों ने कहा सी कदे इहो जिहा हीरा वेखे ते भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लैके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने दे वजे सालसराय महाराज के चरणा च हाजिर होया, अपने नौकर नूं नाल लैके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गया। बड़े वचन विलास होए, कई दिन महाराज फिर इहदे घर विच टिके। उही सालसराय धर्म सालसराय जौहरी की धर्मशाला मुड़के साहब कलगीधर पातशाह का जन्म स्थान बन गई। पटना साहब विखे पवित्र स्थान से महाराज कुछ दिन टिके। वह कुछ दिन टिकिया टिकिया सालसराय के नौकर अधरके नूं ज्ञान हो गया, उन्हूं मस्तियां प्राप्त हो गई। सालसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलों च उडारियां ला रहे, हथ बन के कहन लगा साहब नूं, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहन लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहरा कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इहनूं ज्ञान बख्शिया, इहनूं नाम बख्शिया, इहनूं बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कहन लगे भाई असीं तां हुण चले आ, हुण तूं इहदे चरनी पै जा, ध्यान दे, हुण तूं इहदे चरनी पै जा। कहन लगा महाराज नौकर दे चरनी पाउंदे हो मालक, मेरे कोलों लैके खांदा है। धन गुरु नानक हस पए, कहन लगे रुपये तेरे कोलों लैके ये खांदा रहा है, नाम इहदे कोल लैके तू लै लै, इस वेले नाम वालों यह धनवंत है, रजिया होया ये तैथों पहला प्राप्त करके रजिया होया, रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा लैंदा रहा चाकर बनिया रहा, लेकिन जे नाम लैना ही भाई असीं तां चले आ सालसराय, जे नाम लैना इहदे कोल हैगा।
1: You are listening to Seek Tap Radio.

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

जिथे सारिया भगतों नू सन्माने है उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहते ने जदों देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया ते 14 रतन कढ़े। समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवता।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण कर।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक

कंचन नारी में जियो लोभत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया है।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

हे माधो, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सतसंग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करन वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले। किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे माधो असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए

गोविंद हम ऐसे अपराधी, हे गोविंद असी किहो जाए अपराधी हैं, असी किहो जाए हैं, आप किहो जाए हो। जेता समुंद

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़ दिया उठ के कमा कारा नु तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

आंख सुनाए पूछे आला है विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास। कहिंदे ने कुत्ते दा मास, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू परिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने इक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदियां पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास। शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू ढक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नदर ना पै जाए। अकिरत कण दी नदर पै गई ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि इह गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां ने कड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।